चोरा वृंदावन संचारा बेटा चित चोरा वृंदावन संचारा गोपाला गोपाला हे मुरली गोपाला गोपाला गोपाला गोपाला गोपाला।

बोलो सच्चे नाम सच्चे नाम सच्चे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जप